स्वते रूपयारी सात संगत तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिन्होंने रहमत की बख्शिश की अपना जाप आप करवाया सारिया संगत का तहल तो धनवादी हाँ भाई सतगुरु मेहर करन यहोजे समय हमेशा मिलते रहन जो संगत दे विच आ के जाप करना है ये सब तो उत्तम है सो सतगुरु कृपा करन हमेशा वास्ते ये समा बनया रहे कुदरती आपां बुधवारी शुरू कीते सी पाठ ते अज बुधवारी आ गया है 42 दिन पूरे हो गए ने 40 आपां जुजले करते हाँ पर इस तों वध हो जाण वो चंगे ही चंगे आ माड़ा कोई सो भागा वाले हो भाई सतगुर कृपा करन इस तरह ये जो समा है बनया रहे जिन्ना चिर है कल का पता नहीं कदों समा आ जाना है किसी नूं कोई पता नहीं उम्र उस हिसाब नाल तुरी जाती है पता नहीं कल आवे कि ना आवे सो आओ जिन्ना समा मिलिया है उन्हूं लेखे विच लाइए सतगुरों के चरणों चा के ग्रीनवाज के चरणों च अरदास बेनती करिए ग्रीनवाज सानू अपने चरणों में जोड़ रहमत करो सो आओ जो शहीदी दिहाड़े आप मना रहे हैं परसों फ्राइडे सवेरे छे अखंड पाठ प्रकाश होने ने जिन्हां दे भोग ऐतवार नूं पैणे सारे ही माई पाई दे चरणां च बेनती है भाई जिहो जी सेवा कर सकते हो वध चढ़ के आके सेवा सिमरन करके गुरु की खुशियां प्राप्त करिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा जो आपां कल भी मनाया है उसे दे प्रथाए वीकेंड दे पाठ जो परिवार रखाउंदे ने ज्ञानी जी भाई पाल सिंह होनी जी सारे परिवार रल मिल के करवाउंदे ने उन्हां वल्लों सेवा हो रही है धनवादी हाँ सारे परिवारों का वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आओ हुण रहिरा साहब दे पाठ सरवण करो सत्कार योग पाए साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी पासन जी खिमा दा जच हाँ भुला चुका नहीं खिमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह

रे मन चित में उदम जा हर हर जियो परया सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता

सवारा नम शिकार है ताहे हमारा। जबन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई ही गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह बद कियो। घट घट के

कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान घट घट के बट बट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं।

अंडज जीरज सेतज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संक्रिय कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट

पाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, केल बिख सकल देहे को हरता, दुष्ट दुखिन कौशय करता। श्री

दोहरा नेत्र तुंगे चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बासुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे

0: पावड़ी
1: तथा तुम समरथ जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख अग्नि ओदर माहे सुन के जम के दूत नाहे तेरा छड़ जाहे भौजल बिखम सगाह गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे काल में एहो पुन्न गुण गोविंद गाहे सब सानू किरपाल संभाले।

इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन करते हैं पहला दिन माफी बख्शन भाई कुलदीप सिंह जी दमन में टकसाल वाले आप जी ने पवित्र बाणी कथा राही जोड़नगे उन्हों पासों प्यार से सरण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जियड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर देहो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावे जियो। नवे शिद्र सर्व है अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सुप्रसन्न होवे, मेरा स्वामी हर सिमरत मल लह जावे जियो। माया मोह बिखम है भारी, क्यों तरिए दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंघावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

स्वरूप अंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सो आवे न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बरुआ के गृह पीत।

दुख न करह। कई कोट माया श्रम माह, कई कोट प्रदेश प्रमाह, जित जित लावो तित तित लगना नान, करते की जान है करता रतना, कई कोड़ सिद्ध जती जोगी, कई कोड़ राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर पे उपाय, कई कोट पाथ वृख ने बजाय, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूह मंडल, कई कोट ससिहर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस भाव तिस निस्तार है।

सृजनः सिमरह हर हर राय। एक आस हर मन रख हो नानक दुख परम पव जाय। अस्तपदी मानो की टेक वृथि सब जान देवन कौ एक भगवान।

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास।

पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अल बढ़त्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाख खाहे, असंख निंदक

परम रूपनीत मूर्त पूर्ण पुरखापार सर्व सर्वचेव स्वयंभव घण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरखते अदेश धर्मताम सु परम रहत अभूत अलख अपेश अंग रागना रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्तदाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजन आद्रुभसूत अंगहीन पंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्व गायक सर्व प्रतपा

मनगन उदार मनगन प्रणाम निर्भय निगम अद्भुत प्रचंड अखंड आलस्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वापर नाढ़ अंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर निर्नामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र भर्ती चतुर्चक्र भर्ती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र गाले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने चाचरी छंद ना सत्तरे न मित्र न परम न परमंग न पितरे न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्र परे है पवित्र प्रतिश दिश अदृश अकृश भगवती शांत त्व प्रसाद कथ थे कि आ शुज देश के आ पिज बेस के आ गंज कर्म के आ पंच भरम के आ पिज लोके के आ दित सोके के भूत वरण के विभूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुझा है के आ शोक वरण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अभेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रहीमे रिहाका के पाग व्याव के गैबल गैब के अफुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण गुरिंद के रोजी दहान है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कलीमय के परमंग भीम है के आपक आकल अलामे के साहिब कलाम है के सुनल वजू है तमाम रजू है मेसुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबल प्रस्ता है बिलंदल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजुल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खराज है दृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुभ है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्ल सलाम है सदैव काम दरभा स्वरूप अगाध है अनुभ है ओंगाध रूपे ना स्वरूप अनंगी नामे त्रभंगी त्रकाम त्रिभर्गम द्रवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप अशुज अशुद है के नरकम प्रणास है प्रतुल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रयुक्त अनुभ है नृक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुग स्वरूप प्रयुक्त अनुभ है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजा है अभय है अभूत है अथूत है

बास क्यों बिख्यान उसको बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साज कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। काहुल पाहन पूज तर उसर काहुल लिंगर लटकायो। काहु लखर वाची दिशा में कहु पशाह कहु शीस निभायो। कहु बतान कहो पूजत है पास कहु मृतान कहो पूजन धायो। कूर क्रिया उर जाओ सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। कहु बतान को पूजत है पास कहु मृतान कहो पूजन धायो। कूर क्रिया उर जाओ सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसमी कव्यो बाज बेंती चौपाई। अमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मंदरे हमारा अपना जान करो व्रत बारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबो आप हाथ दे मोहे बचाबो। सुखी बसे मोर परवारा सेवक सिख सभाय करतारा। मोर अच्छा निज करदय करे सब बैरन को आसंग। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा।

अपने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ दोई कुदरत साजिए कर आसन डठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करि पसाओ तू जानो ई सब सह दे लैसे जिन कवाओ कर आसन डठो चाओ कर आसन डठो।

0: स्वाद विस्वाद भेद विस्वाद जी विस्वाद भेद स्वाद विस्वाद रंग स्वाद नंगे फेरे जंत स्वाद पौन विस्वाद पानी विस्वाद अग्नि खेडी बडानी विस्वाद धरती विस्वाद खानी विस्वाद साद लगे प्राण स्वाद सजोग विस्वाद विजोग स्वाद भुख विस्वाद भोग विस्वाद सिफत विस्वादूर विस्वाद देखे हाजर हजूर वेक बुडा रहा विस्वाद नान पूजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत सह कुदरत सुनी कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाता लिया का।

दीपा लुआ मंडला खंडावर पंडा अंड चेर चूत पूजा खान सित जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए किस्मा ने समना जिन करते करना की चिंता भी करनी हिता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ।

0: सच पाइए पौड़ी जितेंद्र सबको
1: देख नजरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़मेदनी सिरे सिर तक।

0: सूत क्यों कर रखी है सुत मुड़ सोए, नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तो ही भला पहरा।
1: मन का सूत लोभ है जेवा सूत कूर, बाकी सूत वेकना पर त्रय पर तन, कनी सूत कन पे लाए।

सोसा एक सदा संभालिए जित की तपाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मुंह लगी चई देल हमी नद निहालिए जो साहेब नाला हारिए।

ग्यावर शतर और तख्त के मालिक तन तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जे बड़वर न कोए सच्ची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तुस तिस मोख द्वार जी के स्वरूप सतगुरां ने

0: जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप उतरी जे बन्ना पुरिया पार
1: सहस सियान लख हो ता एक न चले
0: नई किव कूड़ा टुटे पाल
2: हुकम जाय चलना नानक लिखिया नाल
0: हुकमी होवन आकार हुक्म न कहया जाई
1: हुक्मी हो वन जी हुक्म मिलै बढ़ियाई
0: हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया
1: एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइया
0: हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म न कोय
2: नानक हुक्मै जे बुझै तब हो मैं कह

0: kai kai.
1: Kiti aduk buksat mar.
0: Epe las teri datar.
1: Mand klasi parne hoy.
0: Hor aakh na sakkan ko, hor aakh na sakkan kai koi.
2: Deko kai ki aakhan paai.
0: ओ जाने जितिया मोय खाए
2: आपे जाने आपे दे
0: आखे से पीके के
1: जिसनु बक्से सिर्फ साला
0: नानक पातशाही पातशाह
1: अमोल गुण
0: अमोल व्यापार ये अमोल भंडार
2: अमोल आवे अमोल जाए
0: अमोल पाए अमोल दशमाए
2: अमोल तरम अमोल दीवान
0: अमोल तोल अमोल परवान
2: अमोल बख्शीस अमोल निशान
0: अमोल कर्म अमोल फरमान
2: अमोल अमोल आख्या न जाए
0: आख आख रहे लिबलाए
2: आखे वेद पाठ प्राण
0: आखे पढ़े करे विख्यान
1: आखे भर में आखे इंद
0: आखे गोपी जय गोविंद
2: आखे ईश्वर आखे सिद्ध
0: आखे केते कीते बुद्ध
1: आखे दानव आखे देव
0: आखे सुर नर मन जन सेव
2: इते आखे आखण पाए
0: इते कह कह उठ उठ जाए
2: इते कीता होर करे
0: ता आख न सके केई के
1: जेवड़ पावे तेवड़ होए
0: नानक जाने साचा सोए
1: जेको आखे बोल बकार
0: ता लिखिया सिर गावारा गावार
1: सोदर केहा सो कर केहा
0: जित पै सर्ब समाले
1: बाजे नाद अनेक असंका
0: केते वावण हारे
1: केते राग प्री सो के
0: किते गावन हारे
2: गावे तोनो पौन पणि बैसंथर गावे राजा तनम दुआरे
0: गावे चितगुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे
1: गावे ईश्वर वर्मा देवी सोवन सदा सुवारे
0: गावे इंद्र इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सब विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
2: गावे पंडित पंडित सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
1: गावन रतन उपाय तेरे अरसर तीर्थ नाले
0: गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे
1: गावे खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तारे
0: सही तुनो गावे जोत पावन रते तेरे पाक्त रसाले
1: और केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे
0: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
2: हैप्पी होसी जाय न जासी रचना जिन चाय
0: रंगी रंगी भरती कर कर जिनसी माया जिन उपाय
2: कर कर वेखे कीता अपना जतिस्ती वड्याई
0: जोत पावे सोई करसी हुक्म न करना जाय
1: सो पासाओ सा पासा
0: मुंडा संतोख संपत चोली ध्यान की करे विभूत आई पंती सकल जमाती मन जी तय जग जीत
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद नाद जुग जुग एको वेस
0: उपत ज्ञान दया भंडारण कट कट बाजे नाद
1: आप नाथ नाथी सब जाखी रिदसित अबरा साद
0: संजोग विजोग द्विकार चलावे लिखे आवे पाग
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद नाद जुग जुग एको वेस
0: एका माई जुगत व्याई चले प्रवाण
1: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान
0: जिफ तस पावै ते वै चलावै जिफ हो वै फरमान
1: ओ वेखे ओना नदर ना आवे बोता एव बडान
0: आदेश तस आदेश
1: आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेस
0: आसन लोए लोए भंडार जो कुछ पाया सो एक आवार
1: कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्ची साची का
0: आदेश तस आदेश आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेस
1: एक तू जीवो लख होए लख होवे लख वीस
0: लख लख गेड़ा किया है एक

0: है
1: अजनबी बूझ है असूझ है अकाल है अजाड़ है
2: आ है जा है
1: लीक है मिस लीक है निलंब है असंब है
2: है भूत है अचूत है
1: अलोक है अशोक है अकर्म है अकर्म है
0: जीत है पीत है बा है गा है
1: अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रजंग प्रयाद चांद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने
3: नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व पाले
3: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
1: अनंगी अनाथे नृसंगी परमा

0: भेद है।
1: जंग प्रया छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूप है।
0: सर्वमान्य स्वस्ति निदाने
1: नमस्तुं नाथे नमस्तुं परमाथे
0: नमस्तुं गंजे नमस्तुं अपंजे
1: नमस्तुं अकाले नमस्तुं।

0: अंचिज अंग आसन पांग
1: अपार गत मित उदार
0: जल थल अमान देश विच अपंड
1: जल थल महंत देश विच व्यंत
0: अनपवनास तत्रास
1: आजान वाहो एक सदा हो
0: ओंकारात कथनी अनार
1: खल खंड के आल गुर पर अकाल
0: कर कर प्रणाम चित चरना
1: अंचे जगात आजे जनाबात
0: अंचन जगात अनरंज बात
1: अंतोट पंडार अंठाट बार
0: अडीट कर्म अटटीट कर्म
1: अनपण नात दाता महंत
0: खल मोल बना शांत प्रसाद अकरनालिया है अकालिया है
1: खल खंडन है।

0: Vai प्रसाद सोइए वा शायद अस्मित वा प्रसाद सोइए श्रावक सद समूह सिद्धांत के देख फिर कर ढोक जति के
1: सूर श्राद सद सदा देख सन समूह अनेक मति के
0: सारी देश तो देख रहे हो मत को ना देखे पान पति के
1: श्री भगवान की पाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के
0: पते पतंग झरे जा संग अनूप तंग सुरंग सवारे
1: कोट तरंग तरंग से कूद पवन के गौन को जात निवारे
0: बारी भजान के भूपली विद्या वसी स्थान जात विचारे
1: एते पय को काप है भूपत अंत को नागे ही पाए पधारे
0: सब देश सार को पाचे तौर में डांग नकारे
1: गुंजत गोड़ जा।

0: ब्रह्मचारी
1: कृपा करी हम पर जग माता
0: ग्रंथ करा पूरन सब राता
1: सकल दे गोहरता
0: दश अज्ञान पहुँचा करता
1: जो पाए दयाला
0: पूरन करा ग्रंथ तत्काला।

0: रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन बजिया वधाइया
0: राग रतन परवार परियां शब्द का बनियाइया
1: शब्दोता का वो हरे गेरा मन जनी वसाया
0: कह नानक आनंद वस।

0: एक टांब तुझे देखदा चले नाही तेरा नाले
1: साथ तेरे चले नाही तस नाल क्यों जित लाया
0: ऐसा कम मूल्य न कीजे जितंत पछोताई है
1: सतगुरु का उपदेश सुनो तो होवे तेरे नाले
0: कह आंख मान पे आए तो सदा सच संभाले
1: अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया
0: किने तेरा अपना आंख तू जाने
1: जीव जंत सब खेल तेरा क्या को आंख बखाने
0: आखे तो वेखे सब तू है जिन जग तो पाया
1: कहे नानक तू सदा कम है तेरा अंत ना पाया
0: सुर नर मन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया
0: जन सब तो पाए वेख परसने आया।

जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारू नानक आप बेख हर भिक्षा गुरमुख ब्रह्म विचारू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।

सद्देउठी जाए सुकहु टल गुर सेवियें एहन सुसहज सो पाए दर्शन परसियां गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत कै समधि नुरी अर्शो कुरसों चटियें तुद डिठे सचे पातशाह

बाबा आया है उठ चलना, अद पंदे है संसारो बा, सिर सुर सचड़े लिखिया, दुख सुख पूर्व विचारो बा। दुख